जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा, जीवन यात्रा जीवित यहीमा, पलेना पाँ छेगु जीवन या पला पला नेपुकीमा, किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा, किप्स 98.3 एफएम।

जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: every Tuesday 12 PM and Thursday 8 PM.
1: What's the secret to success?
2: Simple. Say yes to radio advertising.
1: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
2: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
1: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
3: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
4: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678. 5302678. लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्. ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स.
5: यू कैन डांस,
6: यू कैन सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
7: जस्ट ट्यून इन
6: KIPS FM 98.3 MHz, योर कंपेनियन, द रेडियो ऑफ न्यू जनरेशन.

0: 내부시 짱구도 괜찮아.
1: 네팔 भाषाya 내부시 짱미다.
2: सुथैया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
3: द वीकली काउंटडाउन शो ऑफ टॉप 10 इंग्लिश नंबर्स विद एक्सक्लूसिव सेगमेंट्स क्लासिक चॉइस इन्फो हाउस फ्रेश हिट्स एंड मेनी मोर डू ट्यून इन टू वीकली 10
4: Time, Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m. and Thursday 2 p.m.
3: on KIPS 98.3 FM.
5: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम Beauty, Health and Lifestyle. KIPS FM 98.3 MHz मा शनिबार बेलुकी 7 बजे, मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे
6: पुरै एक घण्टा तीनवटा मुभीज का सुपरहिट गीतहरु
7: 3 in 1
3: एभ्री स्याटरडे 9 a.m. एन्ड थर्सडे 6 p.m.
8: KIPS 98.3 FM योर कम्पानियन
9: केही नौलो
3: रोचक
9: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरु
10: KIPS 98.3 FM मा यो हो कार्यक्रम रेडियो मा रोचक

0: हरेक शनिबार बेलुकी 10 बजे
1: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
2: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
3: व्हाट्स द सीक्रेट टू सक्सेस
4: सिंपल Say yes to radio advertising.
3: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
4: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
3: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
5: You can dance.
6: You can sing. All you gotta do is
7: just tune in.
6: Kips FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
8: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
9: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा
10: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट
9: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
10: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
11: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
12: 01-42-35-888 98-12-35-888
13: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत Just tune in, radio, naya generation ko.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: पुरै एक घंटा तीनवटा मूवीज का सुपरहिट गीतहरु
2: 3 in 1
3: Every Saturday 9 AM and Thursday 6 PM

0: Red Bone Tea Food.
1: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा।
2: दिल दीवाना, दिन सजना के।
1: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू, तपाईंकी रेडियो कीप्स एफएम मा।

0: Hits 98.3 FM. Your companion.
1: The weekly countdown show of top 10 English numbers. With exclusive segments, classic choice, info house, fresh hits, and many more. Do tune into Weekly 10. Weekly 10.
2: Time Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m., and Thursday 2 p.m.
1: on KIPS 98.3 FM.
3: Sunao lo yaad, sunao lo geet. Bollywood Golden Hits. KIPS FM 98.3 MHz ma. Aitabar ra Mangalbar diusu 4 baje. सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं के रेडियो किप्स एफएम मा.
4: What's the secret to success?
5: Simple. Say yes to radio advertising.
4: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
5: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
4: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
6: Teri chap chap batti gaera hairani bhayo.
7: अब धन नानमान्नुस नॉनस्टॉप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नु होला. सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपैयाँ देखि.
8: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678. 5302678. लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्. ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स.
9: यू कैन डांस,
10: यू कैन सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
11: जस्ट ट्यून इन
12: KIPS FM 98.3 MHz, योर कंपेनियन,
13: द रेडियो ऑफ न्यू जेनरेशन.
14: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत. जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको.

0: FM 98.3 presents Pop Hour.
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार
0: Every Friday 12 p.m.

0: प्रेसको साथ अब नेपालभरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरूमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
3: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
4: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
5: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
4: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
6: Nepali Pop Flashback Every Sunday and Tuesday 10 p.m., Thursday 9 a.m. and Saturday 5 p.m.

0: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
0: गजल संसार
1: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार दिन की 10 बजे
3: किप्स 98.3 FM, your companion.
4: This is English Non-Stop Hits on Kips 98.3 FM.

0: You can dance.
1: You can sing. All you gotta do is
2: just tune in.
1: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
3: Amilai Sunhos, www.kipsfm.com marfat. Just tune in, radio naya generation ko.
4: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
5: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678. 5302678. लोकेशन को लागी गुगल गर्नुहोस्. बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स.
6: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम.
7: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए.
6: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट KIPS FM 98.3.

0: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
0: गजल संसार
1: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।